भन्दाखेरि त्यही बिएमा आना सेवेस के नन्दन कुछ पसन्द में नंबर आया कि नष्ट बन का कहानी अगर कि नगण बोन चावा नो वाले सिर्फ मुआन ये कहानों नंबर कतई कि मैंने मेरे एफएम में चीन ने पोइन्ट में नंबर कोमरा रे किरीबस ने कही है तो कोमरा रे तो नगरों के आसन बोबो तक तो नगरों ने फिर मायो में के आमुआन तो वी रायो तो बनो बोंग ने कारो को तो बोंग

आवाज ने दोबारे एलन जैक्सन के मैं कुनाने ने बने मैकरी ब्लू दें दें आप बंगा यो यान बारे फॉर्मेट चिनान बोइना फिर बाकी तो ये वो भी मैंने मैं आज बनी सुमीन जाओ वन वा

कुछ पसंद नंबर आने पर यहाँ ते तो करो बंदा ने नेगो यार नहीं पते ब्लू के मैं कुनाई ने ऑल राइस यार मैं और एफएम में चीनान बोइनान वो भी तो करने की मिनिस नगों जाओ रुवाई वंदे इंगा बंगे हो.